मैं बन का पंछी बन बन बोलूं रे. दिस मूवी बाय द वे वन ऑफ द टू मूवीज टू अर्लीस्ट मूवीज ऑफ बॉम्बे टॉकीज. जीवन नैया वेर देविका रानी रैन अवे विद द लीडिंग एक्टर. आई बिलीव हिज नेम वाज नज़मुल हसन. एंड अशोक कुमार हु वाज ए लेबोरेटरी टेक्नीशियन ही वाज ब्रदर इन लॉ ऑफ शशाधर मुखर्जी वन ऑफ द मेन पीपल एट बॉम्बे टॉकीज. एंड ही गॉट द कॉल टू बिकम ए लीड एक्टर एंड ऑफ कोर्स rest is history. This movie has 9 songs and 7 of them are duets of Devika Rani and Ashok Kumar. And of course, you notice the nasal singing and so on and so forth, because that was the norm in that part of the era of talking movies. The next two tracks are from Movie President. First one is a little dialogue before the song. K.L. Sehgal again doing the singing and dialogue. And he was the lead actor. Leela Desai was the leading lady of the movie. The song is Ek Bangla Bane Nyara. Little introductory, first the verse and dialogue before the song. Rahegi na badriya chai, honge ek din suri ke darshan, vahi ghadi abai, Ek Bangla Bane Nyara. Enjoy.

बादल तू नजर न लगा, तू नजर न लगा ओ बादल तू नजर न लगा। मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोर गुल न मचा धीरे धीरे।

जवां है मोहब्बत हंसी है जमाना लुटा है दिल ने खुशी का खजाना. लास्ट सॉन्ग फॉर टुडे कम्स फ्रॉम मूवी शहनाई 1947 मूवी. कंपोजर वॉज सी रामचंद्रा, सी फॉर चितलकर. एंड दिस ड्यूएट ऑफ चितलकर एंड मीना कपूर. ही वॉज ऑल्सो द कंपोजर एंड द लिरिसिस्ट वॉज पी एल और प्यारलाल संतोषी. दिस इज़ ए हिलेरियस ड्यूएट पिक्चर इन दुलारी रेहाना एंड मुमताज अली एज अ विलेज नौटंकी स्टेज प्रोडक्शन काइंड ऑफ सिचुएशन विद द मेल एक्टर डेस्परेटली ट्राइंग टू लुक एंड एक्ट लाइक चार्ली चैपलिन. पे अटेंशन टू द बटलर इंग्लिश इन द लिरिक्स. द कैस्ट वॉज रेहाना, इंदुमती, नासिर खान, दिलीप कुमार यंगर ब्रदर एंड दुलारी हैड अ मेजर रोल सपोर्टेड बाय राधा कृष्ण, बी एच देसाई, लीला मिश्रा, एस एल पुरी, मुमताज अली एट्सेट्रा. पी एल संतोषी बाय द वे वॉज ऑल्सो द राइटर एंड डायरेक्टर ऑफ द मूवी. There are a whole bunch of notable songs in this movie. One comes to mind, and that is Maar Katari Mar Jana Ki Akhiya Kisse Milana Na. The song I want to play for you, as I said, is a hilarious duet picturized on in a village notanki kind of context. Ana Meri Jaan Sunday Ke Sunday. Meri Jaan Sunday Ke Sunday. I love you. Bhaag Yahan Se Tu. तुझे पेरिस दिखाऊं, तुझे लंदन घुमाऊं, तुझे ब्रांडी पिलाऊं, विस्की पिलाऊं और खिलाऊं मुर्गी के अंडे अंडे अंडे. आना मेरी जान संडे के संडे. वी यू नो आई प्लेड दिस सॉन्ग बिफोर बट एवरी टाइम आई हियर इट काइंड ऑफ ब्रिंग्स बैक लॉट ऑफ फॉन्ड मेमोरीज. आई हैव सीन दिस मूवी बाय द वे लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो. एंड नेक्स्ट वीक प्लीज टेल योर फ्रेंड्स अबाउट दिस शो. Next week I'll be playing songs, second installment of Nostalgia Tour. Hopefully you'll tell your friends about the show so that they can tune in, how to tune into the live stream version, and they can start enjoying. So next week I'll start in 1947 and go to 1949 and then 1949-50. A whole bunch of songs I can play from the era 1948-49 to 53-54, but I'm going to be selective. Last song for today. Sign in next, or tune in rather next week. Here it is.